हल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यों पानी पीन लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है, दम रुक गया। ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज, ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने, जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे है कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी, जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसदे बच्चा होण वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौवां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी ओथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ए सब कुछ अखी वेख रहे सन, ए शेह दी गिनती कीती है बाणी दे विच, मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न दे पेट दा बच्चा, ए चारे पुरख हन, शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ए दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नूं जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

तुमरी सरन तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले तुमरी सरन तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले।

जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को, स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को। स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

ज्ञान मति घट चानना भरम अज्ञान अंधेर मिटावे होए निमाणा तै पवे डर गए मान निमाणा पावे।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे, तावन पर उपकार नो गुरसिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।

मैं मन को मान न त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर ऊपर, तब सोवत तै जाग्यो, कहा होत अब कै पछताए, छूटत नाहन पाग्यो। ए चिंता उपजी काट में है, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सुफल जन्म नानक तब हुआ, जाओ प्रभ जस में है पाग्यो।

जे राक्षसां तो देवता नहीं बनाया तो फिर मेहर किस काम। पशु प्रेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे, जेड़े पत्थर हिरदे सन पाहन सन, वली कंधारी वर्गे हंकारिया नू भी तार दिता, नीवा कर दिता। मन नीवा हो जावे तो रब दे नजदीक हो जाएगा। धन गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे भी वेख्या के किसे कोलों सृष्टि नू दुख पहुंच रहा है, ता आपने पापी नू बुलाया नहीं, घर जाके तारिया, घर जाके मेरा कीतिया। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे हुए देव गंधार शहर विच गए। ये बड़ा जंगली अते पहाड़ा दा इलाका सी। ये लोग जीवां नू खांदे सन, कोई भी मनुख इना दे हाथ लग जावे उसका मांस खाना। किस नगरी दा राजा देवलूत जो हर दम खून दा प्यासा रहिंदा सी, लखां देव इस दे अधीन सन। जेड़ा बंदा इस दी नजर विच आ गया ओ कदी बच नहीं सकया। इना दे अत्याचारां दा सारे इलाके विच बड़ा भय सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत जलंदे नू थारदे होए उस जंगल विच चलदे चलदे देव गंधार पहुंचे। मर्दाने बेनती कीती, महाराज बड़ा चंगा है, कुछ दिन ठहरांगे शहर विच, पहुंच के मेरी भूख भी मिटेगी, कोई पदार्थ भी मिलनगे शकन नहीं। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया ये लोग बड़े खतरनाक हैं, कौडा ता राक्षस एक सी ना, कौडा राक्षस इत्थे लखा राक्षस हैं, मानस जाति नू ए चुन चुन के खांदे हैं। कौडा ता मनुखा नू तेल विच तल के खांदा सी, पर ए मनुख दा मांस कच्चा ही खा जांदे हैं, एदे भयानक हैं। महाराज फिर एहो जिहियां खतरनाक थावां ते तुसीं आपे क्यों पहुंच जांदे? मर्दाना कंबिया, महाराज एदे भयानक शहर विच क्यों जा रहे हो? चलो वापस चलिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे ईश्वर कृपा करेगा, एही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करनगे, सीधे रस्ते आ जाणगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता है, अनेकां नूं तारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। एही लोग तेरे चरण पूजनगे, तैनू 36 प्रकार दे भोजन लिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नूं देव लूत असे उस दे राक्षी फौजां सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलते हैं। ते मर्दाने दा रंग पीला पैन लगा, एदियां भयानक शकलां, महाराज अज नहीं बचांगे, ये तो बड़े भयानक मनुख जापदे, बड़े भयानक राक्षस हन। गुरु साहब कहन लगे तू जलाल विच रहो, अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो, मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। जिन्हां नूं बाणी दा आसरा है उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। कितनियां हनेरियां आउन, तूफान आउन, जिन्हां बूटियां नूं जिन्हां ब्रिशां नूं सुमेर पर्वत दा आसरा है ना, चखड़ जाओ ना डोलनी, कितने चखड़ आ जान ओ फिर बूटे डोलदे नहीं, उन्हां नूं कोई हिला नहीं सकदा। इसे तरह मर्दानिया जिन्हां नूं करतार दा आसरा है,
अकाल पुरख का आसरा है, उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। आह किथे किथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जा...

धन गुरु नानक पातशाह बैठे हन ते देवलूत ने वेख्या कि एक मनुख कदी लभदा है, अज ता तीन काबू आए हुए हैं। बड़ा प्रसन्न होया, अपने राखियां नू हुकम दिता कि जाओ इन्हां नू पकड़ के लियाओ। जां ए पकड़न लई नेड़े होए, क्योंकि जदों माड़ा ख्याल मन दे विच आ जांदा है ता मनुख सच और झूठ नू पछाण नहीं सकदा, अन्ना हो जांदा। जां माड़े ख्याल नाल गुरु नानक दे सामने आए ता ए सारे दे सारे अन्ने हो गए। क्यों प्रतीत होन लगा जिवें शरीर भी डिगन वाले हो गए हैं। नेत्रा ता जवाब दे देता है, पर थोड़े समय तक शरीर भी जवाब दे जाएगा। पाज के पीछे हट गए, आख्या ए ता कोई बड़े कलावान नजर आउंदे हैं। कहंदा हट जाओ, परे दूसरा टोला भेजिया, जाओ तुसी पकड़ के लियाओ। ए पता नहीं आज किवें बुजदिल बन गए हैं। एक होर टोला भेजिया, जदों ओ भी नेड़े जाके जदों अन्ने हो गए ता मन कंब गया, दिल डर गया। जेड़ा पाप करदियां कदी नहीं सी मन कंबिया, अज थर थर कंबन लगे सारे। ए देव ते आए देवलूत दे पास, महाराज ए साडे वश नहीं, ए ता कोई वड्डा कलावान है, ए ता कोई वड्डियां शक्तियां वाला। ते देवलूत कहन लगा, अच्छा जे तुहाडे कोलों कुछ नहीं होंदा ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵਲੂਤ, जे साडे पास आउणा है तां सच्चे हिरदे नाल आ, फिर तैनू कुछ नहीं होवेगा। मैं जानदा हां, मैं बड़े बड़े फकीर वेखे हां, मैं वेखना तुहानू अज कौन बचाउंदा है। जा देवलूत अहंकार दे नाल अन्ना होया होया आया, ते नेत्र भी जांदे रहे ते शरीर दे विच एक पीला तोड़न दी भी ताकत ना रही, थे ओथे दा ओथे ही गुच्छा हो गया, बैठ गया। झट बाद होश आई ते मन विच ख्याल आया कि हो सकदा है ओ ईश्वर जिन्हू परमात्मा करके लोग पूजदे हन, ओ साडे चंगे कम्मां ते नहीं साडे पापां ते रीझ के सानू तारन आया होवे। मन निम्रता विच आ गया, हंकार नू पार पै गया। जदों रिदा सच्चा हो गया तां देवलूत नू हुण गुरु नानक दे दीदार हो रहे हन। उचारण करो श्री, दर्शन हो रहे हन। मन शुद्ध हो जावे ते फिर गुरु का दीदार है। गुरु की बाणी पढ़ो, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। फिर गुरु प्रतख नजर आउंदा है बाणी पढ़न वालियां नू, उदी याद विच बह जाओ, ओ नेड़े है। जे अहंकार दा पर्दा है तां दूर है। साडा अंतःकरण शुद्ध होएगा, गुरु सानू नेड़े दिखाई देवेगा। इसे लई जपन वालियां दी संगत करी दी है, महापुरखां दी संगत दी की लोड़ होंदी है। सगल गुणा गुण उत्तमो, परता दूर ना पिखरी। ओ परता अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दूर नहीं पासदा, इस लई जदों नेड़े समझदे हां तां फिर ओ नेड़े हो जांदा है। उचारण करो श्री वाहेगुरु। अंतःकरण शुद्ध हो गया, चरणा ते ढह पिया, नैणा दे जल नाल चरण धो दिते। ओ मेरा दे साईं,
تو بخششاں دے داتے اسی روم روم گناہگار ہاں پاپاں دی کوئی گنتی نہیں جڑے منہوں بول کے دسیے کہ کتنے کو کیتے ہاں

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, अज इना देवा नू भी देहा नू भी देवत्यां दी नगरी बना देता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवा ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरा होर भी अनेकां ते कीतियां तन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेखे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

गुर अंगद की ते कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक रुपया हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जाए आया हर तुम बड़ अगम अथाह।

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। सारे जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो। चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्टि महासुख होए हरस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तिप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग, परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधन निभलाग। बड़ पागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु हुयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख परम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी राव रहा सत्संग हजूरी, जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाख है। सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गाढ़े। गुरु पूरे तत है बुझाया प्रभु अपना नानक जन ते आया। साजन संत करो इहो काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवर नाम जपावो। भगत पाए तरिये संसार बिन भगति तन होसी छाट। सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर यही सुहाओ। नेत्रो पेख दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग। एक बस्त दीजे करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए। प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण अधार। जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। वो भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी सोभा तनवंत हृदय बसे पूजन गुरुमंत। साध संग प्रभु।

सरोही नमो श्री भक्ति बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां की पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझ देने शस्त्र नूं नमस्कार करके शस्त्र की पूजा उचार देने वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने भगौती बडैली सरोही ये नाम हैं तलवार दे। शस्त्र की पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती बडैली सरोही नमो श्री भगौती।

त्वे सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पोत का झलहे तहंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे साम है मोख दाती अपंगी धीरे शाम है मोख दा

0: भाई नंदलाल जी,
1: ताल बे मौला,
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त, ताल बे मौला, हमेशा जिंदा अस्त।

मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तलकाल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त हो।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पैंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हें की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उचार पुजार पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत परावत होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ए जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार कुंड के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब दे वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब
1: सुनो नंदलाल एहसास प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं
0: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण करा वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को तुझ

0: देश खालसे को तुर्क जाएंगे भार, देश खालसे को तुर्क जाएंगे भार।
1: अलग सो एक लड़ाऊ चले सिंह
0: किस मुगलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत आए, सवा लाख जब धुखे पलीता, सवा लाख जब धुखे पलीता, तबे खालसा उदे

परम सम्मानीय गुरु खालसा साहब समेत जी, आप जी बड़े प्यार साहब, श्रद्धा साहब, धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, तिना का धन्यवाद करते हुए खालसा पंथ के सृजन हारे दाता की सिफत सराह अपने शुकराना करने बाणी नाल जुड़ा गुरसिख साध संगत ने यत्न किया है। बहुत ही श्रद्धा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असां पिता की सामनी है, हक असी जताते हैं, तो फिर ये शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने कहो जहा खालसा साजिया तिख्या है, आठ नरस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंजक नायन के। गुरु नानक जी का की कथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले में भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ना बुलाया। आनंदपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए, आपे अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख न जगाया कि ने कर दिया मातावां भैणां अते सिंघणियां ने। मैं जो तत विचारिया है, अगर अजकल दिया पत्नियां भैणां मातावां इस गल का प्रण कर लैन कि गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नूं विदावा लिख के चल रहे गुरसिख अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं, तो गुरां का हुक्म मने। ऐसी गल ना होवे, असी भुले हुए छेती घर नूं प्रत आईए ते अच्छा है। ऐसा ना होवे के घर प्रत के फिर जिनी कुर्बानी चाली सिंघां नूं करनी पई, इतिहास आपके सामने है। सो ऐसे दशमेश पिता जिन्होंने सानू गरीबां नूं लताड़िया होया नूं गले लाया, ऐसे शहनशाह मतलब भाई साहब भाई नंदा साहब जी ने जो शुभ वचन कहे हैं, आप प्यार साहब सुनो।

सास ग्रास भगती करने वाला अज अमृत वेले उठ्या, इशनान कीता है, क्योंकि नेत्रा तो हीन है। जो सैर करन निकलिया ते रस्ता ही गुरु दरबार दा भुल गया। बाणी पढ़दिया नेतन